गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर आरजे अंकित आपके साथ, और मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम लेके नॉन स्टॉप गपशप। जी हाँ दोस्तों, मालूम है बाहर हो रही है बारिश, और जो घर बैठे वो तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर निकले हैं उन्हें तो परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी इंजॉय और परेशानी दोनों ही करनी चाहिए। और इंजॉय से याद आया दोस्तों कि आपको इंजॉय कराने के लिए आपका दोस्त अंकित यहाँ आ चुका है आपके स्टूडियो पे। दोस्तों जब भी मैं आता हूँ लाता हूँ एक टॉपिक और करते हैं हम एक दूसरे से बातें उस टॉपिक पर। दोस्तों आज मैं सोचा क्यों ना एक सरल लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया जाए। आज मैं सोच रहा हूँ करूँ बात आप लोगों से सॉरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सॉरी के बारे में, माफ़ करने के बारे में, क्षमा करने के बारे में। बस कुछ नहीं, आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि जो सॉरी शब्द है, ये जो माफ़ कर दीजिए शब्द या फिर जो क्षमा वाला शब्द है, ये क्या बस एक शब्द है? इससे क्या कुछ ठीक नहीं होता, या फिर सच में इस जो शब्द में है ये वर्ड है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड बना देता है। अगर आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती है, शायद सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं होता, ये बस एक शब्द है, बोल के आगे बढ़ जाओ। आपके मन में जो भी विचार है सॉरी को लेकर आइए, हमसे शेयर करिए। हमारा फोन नंबर है 221313 41। एक बार नंबर फिर से बोल देता हूँ, वो भी स्लोली 221313 41। आई होप आपने नोट कर लिया होगा हमारा फोन नंबर। और चलिए सुन लेते हैं पहला ट्रैक हमारे आज के इस कार्यक्रम का।

0: फिल्म ए बी सी डी से दोस्तों जिगर सरैया की आवाज में आप सुन रहे थे। ये ट्रैक सचिन जिगर का कंपोजिशन मयूर पूरी के थे बोल। हमारे साथ एक दोस्त हैं, फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो दादा,
0: हाँ शौभिक नमस्ते एंड वेलकम टू माय शो। बताओ क्या कहना चाहते हो आज?
1: टॉपिक फिर से बता दे तो अच्छा होगा।
0: देखो हम लोग बात कर रहे हैं सॉरी के बारे में, क्षमा के बारे में, माफ कर देने के बारे में। अगर हम किसी से सॉरी मांगते तो क्या सच में रिश्ता सुधर जाता है, सब ठीक हो जाता है, या फिर नहीं? एक एक ऐसा शब्द है कि किसी को कोई परवाह नहीं, बस सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ।
1: दादा देखिए, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो सॉरी जो है ना, वो कभी कभी बोलना जरूरी है। कभी कभी हम लोग वो जो होता है ईगो बहुत बड़ा काज करता है। देखिए हम लोग किसी के साथ नया कर देता है तो हम लोग ईगो के साथ चलता है, नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, दूसरी तरफ से जो है वो ही सॉरी बोलेगा। इससे ज्यादा क्या होता है, हम लोग जो भी रिलेशन में हो,
0: बिल्कुल
1: फ्रेंडशिप का जो रिलेशन होगा, लाभ का जो रिलेशन होगा, वो एक अच्छा सा ना वो दूरत्व हो जाता है,
0: खराब हो जाता है।
1: हाँ एकदम दादा, खराब हो जाता है। मुझको लग रहा है सॉरी कभी कभी बोलना चाहिए क्योंकि इतने ना दूसरा जो आपका देखिए जो भी हो, आपको वहाँ पर आपने वो जो है तो गलती किया बा ना किया, इट भी सॉरी बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जो है ना, वो उसको दिमाग में काज करेगा, वो आदमी तो मुझको सॉरी बोला, मेरी गलती है, उसको दूसरी तरफ से वो सॉरी बोला, उसका ना मन में एक लज्जा की बात आएगा।
0: बिल्कुल
1: मैं गलती किया, दूसरी तरफ से वो सॉरी बोला। जब भी कोई नया न करने जाएगा दूसरी टाइम में, वो नहीं करेगा, आपके साथ बहुत अच्छा सा एक बॉन्डिंग हो जाएगा। मुझको लग रहा है कभी कभी ना सॉरी बोलना चाहिए, इससे ना संपर्क को जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है ना,
0: वो सुधर जाता है
1: एकदम दादा। कभी कभी मुझको जो लग रहा है कोई कोई सॉरी नहीं बोलता है, नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा।
0: सही बोल रहे हैं
1: एकदम दादा, मुझको जो लगा सॉरी एकदम बोलना चाहिए दादा।
0: थैंक यू आने के लिए, हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ने के लिए और बताने के लिए इतनी अहम बात। अब बातें अगर अहम हो दोस्तों तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ, मैं भी बताऊंगा कुछ अहम बातें। क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो मनुष्य को पशुता के ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है। संसार में प्रतिशोध लेना सरल है, परंतु किसी के द्वारा किए गए आघात को भुलाकर उसे हृदय की क्षमा कर देना अत्यंत कठिन है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक बल का वह उच्चतम शिखर है, जहां पहुंचकर मनुष्य हर प्रकार के द्वेष और प्रतिशोध से मुक्त हो जाता है।

फिल्म कॉकटेल 2 से दोस्तों बयानी और हार्डी सांधू की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक, प्रीतम चक्रवर्ती का कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। तीन ढड़ी एम हो चुका है दोस्तों, और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है और 107 एफएम ट्यून किया, उन्हें बता दूं कि आपके साथ आपका दोस्त आरजे अंकित आज है इस चैनल पर, और आज हम बात कर रहे हैं सॉरी पर, माफ करने पर और क्षमा पर। और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या सॉरी बोलने से, क्या माफ कर दीजिए बोलने से, क्या क्षमा मांगने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती, सारे रिश्ते सुधर जाते, या फिर आपको बस ऐसा लगता है कि ये बस ऐसा एक शब्द है जिससे कुछ नहीं होता, बस शब्द बोलिए, सॉरी बोलिए और आगे बढ़ते चलिए। और आपकी राय जानने के लिए, आपके विचार जानने के लिए हमारा फ़ोन नंबर खुला है आपके लिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341। आइए अपने विचार और राय शेयर करिए हमसे। और दोस्तों हम हमेशा सोचते हैं कि सॉरी क्या है, कुछ अपराध या भूल या अहित के बदले में उसे प्रतिशोध न लेने का संकल्प ही क्षमा है। लेकिन क्षमा की परिभाषा केवल बदला न लेना तक सीमित नहीं है। वास्तविक क्षमा वह है जहां अपराधी के प्रति मन में छुपा हुआ क्रोध, कड़वाहट और हीन भावना पूरी तरह समाप्त हो जाए, उसे ही असली सॉरी बोलेंगे हम।

सोनू निगम की आवाज में फिल्म पीके से दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक शांतनु मोइत्रा का कंपोजिशन और लिरिसिस थे स्वनंद किरकिरे। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो अतीत की उस अप्रिय घटना के मानसिक बोझ को अपने कंधों से उतार देते हैं। ये सामने वाले को सुधारने का अवसर देने के अधिक है। स्वयं को मानसिक बंधनों से मुक्त करने की एक सचेत प्रक्रिया है।

फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से सुखविंदर सिंह की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल। भारतीय संस्कृति और दर्शन में क्षमा को जीवन का मूल आधार माना गया है। हमारे शास्त्रों में क्षमा को धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहले स्थान दिया गया है।

0: फिल्म गुंडे से दोस्तों नेहा भसीन और बप्पी लहरी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। संगीत से सजाया तो सवाली सेन ने, बोल से जबरा था इरशाद कामिल ने, और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते, कौन है तुम्हारा साथ फोन लाइन पे?
1: है दादा,
0: रजत, वेलकम टू माय शो। बोलो, की बोल रहे आज के?
1: আমার মতে এই ভুল গুলো ভুলে গিয়ে যদি আমরা একটু সরি বলি, এটা কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া যদি আমার আচরণে যদি কেউ দুঃখ পায়, সেখানে সরি বলাটা অবশ্যই দরকার। আমরা এরকম অনেক বাস্তব উদাহরণ দেখি যে এই সামান্য সরি কথাটার জন্য মানে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন টানাপোড়েন দেখা যায়। যেমন পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক হয়তো কারোর আচরণের কারণে হয়তো খারাপ লাগলো, কিন্তু সেখানে একটু যদি কেউ অল্প করে সরি বলতো সেই ইয়েটা সেরকম সমস্যাটা হতো না। এরকম বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমরা দেখি। তো আমার মনে হয় যে এই অহংকার না করে যদি নিজেদের মধ্যে এই আন্তরিকতা নিয়ে যদি সরিষা বলা যায়, তো অনেক সম্পর্ক এখনকার দিনে আরো ভালো হয়।
0: बिल्कुल बिल्कुल रजत, थैंक यू आने के लिए फोन लाइन पे। तो रजत ने तो काफी अच्छी बातें बताई कि हमें अपनी अहंकार को छोड़कर अगर माफी मांग सकते हैं तो मांगिए, ताकि हमारा जो रिश्ता है वो सुधर जाए। और 10:30 AM हो चुका है दोस्तों, आर जे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर, यानी 107 FM रेनबो पर, आर जे अंकित आपके साथ। और आज दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ सॉरी करने पर, माफ करने पर या क्षमा पर, कि अगर हम किसी को सॉरी बोलते हैं या बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, तो क्या सच में इससे कुछ सुधार आता है, हमारे रिश्तों में सुधार आता है या सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, या फिर आपको बस ऐसा लगता है कि ये बस एक ऐसा शब्द है, इससे कुछ होता नहीं, बस ये शब्द बोलो और आगे बढ़ते चलो। आपके मन में जो भी विचारें आई हमसे शेयर करिए, हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341। दोस्तों सनातन परंपरा में पृथ्वी को क्षमा का साक्षात रूप माना गया है, जो मनुष्य के हर आघात को सहकर भी उसे जीवन देती है। महाभारत के युद्ध के बाद भी युधिष्ठिर की धृतराष्ट्र के प्रति सम्मान और भगवान बुद्ध द्वारा अंगुलिमाल जैसे क्रूर डाकू को क्षमा को कर उसे करुणा के मार्ग पर लाना भारतीय इतिहास में क्षमा के अनुपम उदाहरण है।
2: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। Non-stop Gupshup, 107 FM Rainbow Par. Non-stop Gupshup, non-stop Gupshup, 107 FM Rainbow Par. FM Rainbow Par.

0: फिल्म ये जवानी है दीवानी से अरिजीत सिंह की आवाज़ में इलाही सुन रहे थे आप। प्रीतम का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य की। बोल, आइए, एक और दोस्त आ चुके हमारे साथ फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते, कौन है तो फोन लाइन पे?
1: गुड मॉर्निंग भैया, मैं जीतू बातें कर रहा हूँ बिसरा से।
0: गुड मॉर्निंग जीतू, बताओ कैसे हो और आज क्या कहना चाहते हो?
1: जी बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मौसम तो पूरा बारिश वाला है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही अच्छा है, सॉरी शब्द। देखिए, ये जो सॉरी शब्द है मतलब बहुत जगह यूज भी होता है, और सॉरी ऐसा शब्द है जो बिगड़ा हुआ काम को संभाल लेता है और जो मुसीबत में जैसे फंसने वाला होता है तो ये सॉरी शब्द से बचा भी लेता है। अब कई कई जगह हम देखे हैं, कोई व्यक्ति भीड़ वाली जो जगह होता है तो वहाँ पर मेरे वजह से या फिर मतलब जैसे कि मेरे वजह से या फिर उसी की वजह से मुझे यदि चोट लग जा रहा है उसे सॉरी बोलना तो बनता है, सॉरी बोलना तो बनता ही है। लेकिन हाँ, हम देखे हैं कई जगह मतलब देखे हैं कई व्यक्ति मतलब जानबूझकर मतलब गलती करते हैं और बार बार जो है सॉरी भी बोलते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए इसको कि मतलब बार बार गलती करे और सॉरी बोले।
0: बिल्कुल, ज्यादा सॉरी बोलना भी अच्छा नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ये भी होता है कभी फंस भी जाता है, देखते हैं हम लोग जैसे कोई ज्यादा बड़ी मतलब ऐसी मतलब हो गया हो घटना तो वहाँ पर सॉरी बोलकर भी वो बच नहीं पाता है।
0: बिल्कुल सही बोल रहे हो,
1: वहाँ पर उसको मतलब दंड देना ही पड़ता है।
0: सही है,
1: और बस इतना ही कहना चाहूंगा। और बस आपका जो टॉपिक चल रहा है सॉरी के ऊपर, छोटी सी शायरी है सॉरी के ऊपर ही।
0: चलो सुनाओ, देखें क्या शायरी लिखे हो तुम।
1: तो बोलने से कभी कभी बात तो खत्म हो जाते हैं, सॉरी बोलने से कभी कभी बात तो खत्म हो जाते हैं, गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर गलती को समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम ही मिल पाते हैं।

0: वाह जीतू वाह, बहुत अच्छी शायरी, बहुत ही अच्छी
1: शायरी में लिखा हूँ अभी, जस्ट भी आपका टॉपिक सुन रहा था प्रोग्राम, और चलो एक थोड़ा सा शायरी लिख लेता हूँ।
0: थैंक यू जीतू, थैंक यू, ऐसे ही लिखते रहो। अगली बार कोई टॉपिक लाऊंगा तो उस पर भी एक शायरी जरूर लिखना और हमें सुनाना जरूर। और संत कबीरदास जी ने लिखा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा तहां आप। अर्थात जहां क्षमा है वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। जैन धर्म का पर्युषण पर्व और मच्छामी दुकड़म की परंपरा तो पूरी तरह से जाने अनजाना में हुई भूलों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगने व क्षमा करने पर ही आधारित है।
2: Ready? What? Two? What?

फिल्म दबंग 2 से दोस्तों वाजिद, ममता शर्मा और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक। साजिद वाजिद का कंपोजिशन और जली शेरवानी के थे बोल। 10:43 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और सिर्फ 107 FM रेनबो पर ही नहीं दोस्तों, आप हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं रहने वाला हूँ इस कार्यक्रम में 11 बजे तक आपके साथ। और आज दोस्तों मैं नॉनस्टॉप गपशप में बात कर रहा हूँ सॉरी के बारे में, क्षमा के बारे में, माफ कर देने के बारे में कि क्या सॉरी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाती, सारे रिश्ते सुधर जाते हैं, या फिर ये बस ऐसा शब्द है जिससे कुछ ठीक नहीं होता, इसको बोलो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों क्षमा केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि इसके व्यवहारिक, शारीरिक और मानसिक लाभ भी होते हैं।

फिल्म जब तक है जान से रब्बी की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक ए आर रहमान का कंपोजिशन गुलजार के बोल। और एक जरूरी सूचना दोस्तों कि अगले 2-3 घंटों के दौरान नदिया और हावड़ा जिले में हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और दोस्तों बात करते हैं क्षमा के बारे में, तो आपको बताऊं कि मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग क्षमा करना जानते हैं वे अवसाद, चिंता और अत्यधिक तनाव से दूर रहते हैं। क्षमा मन को शांत और एकाग्र बनाती है।

फिल्म अग्निपथ से सोनू निगम की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत दोस्तों आप सुन रहे थे, अजय अतुल की आवाज़ कंपोजिशन और अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के एक लास्ट ट्रैक की तरफ। लास्ट ट्रैक होगा शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाज़त। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जाते जाते एक मैसेज की माफ़ी मांगते रहिए और माफ़ करते रहिए।

0: जी हाँ, स्वागत है स्वागत है स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन एफएम रेनबो 107 पर। और क्योंकि अभी वक्त हो चुका है ऐसे कार्यक्रम का जहां बनता है सुरों का सबसे लाजवाब जायका। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का, 3 का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। 3 का तड़का, 3 का तड़का, 3 का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
0: वैसे दोस्तों, मौसम आज सुबह से ही सुहाना है। बारिश की रिमझिम रिमझिम बूंदे आपके और हमारे मन को भिंगो ही रही है, लेकिन इस मौसम में हमारा इरादा है कि आपको पुराने और नए बेहतरीन गीतों के मिक्स से हम आपको दीवाना बना दे। आज इस तड़के में लगेगी 3 चीजें, प्यार, दोस्ती और थोड़ी सी मस्ती। जी हाँ दोस्तों, अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि सुरों का जो ये सफर है अब शुरू हो गया है रिंकू के साथ। जी हाँ, चलिए लगाते हैं आज का पहला तड़का इस धमाकेदार गाने के साथ और सुनते हैं हम विशाल डडलानी, के नितिन मोहन और बप्पा की आवाज में, यानी कि बप्पी लहरी की आवाज में फिल्म गुंडे से ये गीत।

वाह क्या बात है, इस गाने ने तो सच में माहौल में एक नया ही एक अलग ही जान डाल दी है। वैसे विशाल डल्ला ने और के मैं नीति मोहन और बप्पी लहरी के साथ जो एंट्री की है इस गाने ने, वैसे तो क्या बात है। वैसे कहते हैं कि इन गीतों के पीछे एक अजीब सी दिलों में भी घंटी बज रही होती है। वैसे आप सभी के दिलों में घंटी तो बजी चुकी है। वैसे मेरा जो बातें हैं, हमारी जो आपकी बातें हैं, मुलाकातें हैं, वो घंटी से कई लगातार बहुत ज़्यादा मज़ेदार और भी किस्सों के साथ ही हलचल पैदा करने वाली है कि आप और मैं इस वक्त अभी स्टूडियो में ही मौजूद है कि मैं स्टूडियो के अंदर हूँ, आप स्टूडियो के बाहर है, लेकिन हमारे दिलों के तार, घंटियों के तार एक ही सुर में बजे जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, हमारे और आपके बीच का रिश्ता तड़का से भी बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। वैसे हमारा जो दूसरा हमारा तड़का है, वो कहते हैं कि जैसे नमक, नमक म्यूजिक के बिना जिंदगी बिल्कुल जैसे फीकी रहती है, वैसे ही जैसे बिना नमक के खाना फीकी रहती है। और जब बात तड़के की आती हो तो खाने में नमक हो और साथ में तड़का हो तो मजा जो है दुगना से भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। वैसे तो जो गाना आपने सुना था वो विशाल डडलानी, के नीति मोहन और बप्पी लहरी की आवाज़ से सजी हुई फिल्म गुंडे से थी, लेकिन अभी हम सुनेंगे नीरज श्रीधर की आवाज़ में ये गीत फिल्म लव आजकल से।

जी हाँ दोस्तों, क्या बात है। वैसे नीरज श्रीधर ने ट्विस्ट तो मचा ही दिया है, क्योंकि तड़के का जो ट्विस्ट है वो सीधे सीधे आपके और हमारे दिलों के बीच में घर करता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे हमारे तड़के का शो का टाइम हो गया 3:15, और हमें अभी बहुत से काम करने हैं, क्योंकि अभी 3:30 हमारा एक विशेष कार्यक्रम उमंग जाएगा। लेकिन गीतों के साथ हम आपको परियोजना प्रस्तुति बताएंगे, लेकिन साथ में पहले ये गीत सुन लेते हैं शालमली खोल गेडे के आवाज में।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे शान मलिक खोलगड़े की आवाज में। ये गीत फिल्म इशक जादे से, गीत के बोल लिखे थे कौशर मुनीर ने और संगीत से सजाया था अमित त्रिवेदी ने। दोस्तों अभी हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री योजना की विषय में।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।

0: जी हाँ दोस्तों, हम परियोजना प्रस्तुति में बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में। आज हम बताएंगे कि ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी और छत यानी कि रूफटॉप सोलर योजना है, जिसके तहत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस योजना के तहत सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर भारी वित्तीय सहायता देती है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली इस योजना के लाभ लेने वाले परिवारों को हर महीना 300 यूनिट तक की बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलती है और ये 1 किलोवाट क्षमता वाले के लिए 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट क्षमता वालों के लिए 60,000 की सब्सिडी है और 3 किलोवाट या उससे अधिकतम के लिए 78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है। अतिरिक्त राज्य सब्सिडी दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में राज्य सरकार द्वारा अलग से 30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा रही है। यदि आपके सोलर पैनल आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं तो आप इस बिजली को ग्रिड यानी कि डिस्कॉम को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं और आपको इसके लिए एलिजिबली कौन सा होना पड़ेगा यानी कि पात्रताओं की शर्तें क्या हैं ये आप जान लें कि आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार के पास अपना खुद का पक्का घर होना चाहिए जिसकी छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो, घर में एक वैध बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है। योजना के लाभ लेने और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट यानी कि pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना बिजली उपभोक्ता नंबर यानी कि कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और बिजली बिल की कॉपी की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी अन्य राज्य स्तरीय योजना या रक्षा कर्मियों यानी कि मार्टेज सोल्जर से जुड़ी किसी शौर्य योजना के बारे में भी है तो इसमें भी आपको मिल सकती है। वैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया है कि जरूरी दस्तावेज और क्षमता का सही चुनाव हमको जान लेना जरूरी है। बिजली का हालिया बिल है जो कंज्यूमर नंबर और स्वीकृति लोड देखने के लिए आपको पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पते का सबूत होना बहुत जरूरी है यानी कि रूफ टॉप सोलर लगाने के स्थान का प्रमाण होना जरूरी है, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक जिस खाते में सब्सिडी के पैसे आएंगे, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। आप आधिकारिक पोर्टल यानी कि pmsuryaghar.gov.in पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर जाए, अपना राज्य बिजली विवरण वितरण और डिस्कॉम का नाम, अपना उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल दर्ज करके रजिस्टर करें। अपने उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें। इसके बाद अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर फॉर्म भरें। आपकी डिस्कॉम कंपनी आपके आवेदन की तकनीक जांच करेंगी। हरी झंडी मिलने के बाद आपको अपने क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत वेंडर से सोलर प्लांट लगवाना होगा। सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद प्लांट की पूरी डिटेल पोर्टल पर सबमिट करें और नेट मीटर लगाने के लिए अप्लाई करें। डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाने और निरीक्षण पूरा करने के बाद पोर्टल पर एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके बाद पोर्टल पर अपने बैंक खाते की जानकारी भरें। 30 दिनों के भीतर आपकी सब्सिडी सीधे आपके बैंक पे खाते में आ जाएगी। आप अपने मासिक बिजली बिल या खपत के आधार पर किसी क्षमता पर पुनः उसे चुन सकते हैं। यदि आपकी मासिक बिजली की खपत लगभग 250 या 300 यूनिट है तो आपके लिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सबसे सही रहेगा, जिस पर आपको 78,000 की पूरी सब्सिडी मिल जाएगी। और साथ में आपको इस प्रकार के बिजली मुफ्त योजना के बारे में भी pmsuryaghar.gov.in पर जाकर सारी पूरी योजना का विस्तार से विवरण मिल जाएगा।
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM Rainbow पर टीम का तड़का।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज में ये गाना। लेकिन अभी वक्त है कार्यक्रम उमंग का, चलिए हम गौर करते हैं एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका। आप

0: को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
1: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर।

0: करके हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
1: जी,
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे अपने श्रोताओं की ओर से कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर ये

0: पाते हैं। इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी विद्यार्थी को संकोच किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी, डॉक्टर साहब आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है वो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है

0: समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह की जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उससे बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना

0: जाएंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
0: हाँ।
1: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
0: हो सकता है,
1: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
0: जी।
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
0: जी।
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
0: जी, उसी को।
1: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
0: हाँ, होती है।
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
0: प्रयास
1: वो सफल
0: किया?
1: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
0: जी।
1: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
0: हाँ, होता
1: तो,
0: है।
1: तो इसका मतलब क्या हुआ
0: जी?
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
0: जी।
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
0: थोप
1: जैसे
0: देते
1: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना।
0: हाँ, प्रोत्साहित करें,
1: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
0: जी,
1: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
0: जी,
1: नियमली हम बनाए टाइम टेबल, हम एक बनाए, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
1: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
0: जी,
1: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
0: जी।
1: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
0: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। सुरों की महफिल।
1: नमस्कार श्रोताओं, 107 FM रेडियो पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आरजे रिंकू और आपका स्वागत करती हूँ मैं सुरों की महफिल कार्यक्रम में, यानी कि छायालोक में।

सुरों की महफिल। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का आज दिन है और आज मौसम ने बहुत ही रुख ए अंदाजे बयां कर दिया है कि मैं तो आज खुश मिजाज ही रहूंगी। जी हाँ दोस्तों, सुबह से बारिश की रिमझिम बूंदें हमें ये बता रही है कि आज पकोड़े खाने का दिन है और घर में बैठकर हम अपने टीवी में श्याम प्रसाद मुखर्जी के बर्थडे के सारे न्यूज देखेंगे और साथ में अच्छे अच्छे गीतों का भी अनुसरण करेंगे। जैसे कि आज रिंकू आपके लिए लाई है एक प्यारे प्यारे गीतों के साथ आपका खुशनुमा सफर यानी कि सुरों का महफिल। तो चलिए हिमा सरदेसाई मलेशिया और वसुदेवन की आवाज में सुनते हैं फिल्म सपने से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, जैसे गीत से ये पता चल गया है, हेमा सरदेसाई और साथ में थे हमारे मलेशिया वासुदेवन की आवाज से, इनके गीतों से ये पता चल गया कि हल्की सी सितार या सरोद या पियानो या फिर धुन धीरे धीरे ही आपके मन को बहका रही है। वैसे दोस्तों, इस दौड़ती भागती इस जिंदगी में हर इंसान सुकून की तलाश में है, पर कम वक्त ये सुकून भी तब तक अधूरा रहता है कि जब तक इसे सुरों का साथ ना मिले। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि हम तो लाए हैं आपके लिए सुरों की महफिल। तो कहते हैं ना कि हम सुरों के साथ आपके साथ रूबरू यूं ही पिरोते जाएंगे कि जब तक आपकी आनंदों की बात तय ना हो जाए। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है कुमार सानू और अलका याग्निक की। जब बात सुरों की महफिल की हो रही हो तो भला इस नाम को हम कैसे भूल जाए जिसने एक पूरे दौर को मोहब्बत करना सिखाया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुमार सानू और अलका याग्निक जी की। किसी ने क्या खूब कहा है कि गीत तो बहुतों ने गाए इस जमाने में, पर जो बात सानूदा के दर्द और अंदाज में है वो कहीं और कहाँ। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की याद में, फिल्म गुलाम से।

सुरों की महफिल। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानोवाल का याग्निक की आवाज में तन्हाई में दिल धड़कने लगा जैसे गीत। तो बात तन्हाई की हो रही है, तन्हाई में क्या क्या हो सकता है, आइए दो और गीतकार हमारे सामने कह रहे हैं, वो है अलका याग्निक और उदित नारायण।

जी हाँ दोस्तों, वैसे कहते हैं कि शब्द जहाँ थक जाते हैं ना, वहां से संगीत का सफर शुरू होता है और हमारी सुरों की महफिल का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, यहाँ बस आप है, मैं हूं और कुछ ऐसी धुनें हैं जो आपके दिल के सूनेपन को अपनी आवाज में भर देगी। तो आइए एक और धुन ऐसे ही सुनते हैं रूप कुमार राठौड़ और हेमा सरदेसाई की आवाज में।

0: जी हाँ दोस्तों, आंखों से रस्ते से दिल में उतर कर दिल खो जाता है। और राहत इंदौरी साहब के ये शब्द थे, अनु मलिक जी का संगीत। वैसे फिल्म हीरो हिंदुस्तानी जो आप लोगों ने सच में सुना होगा। वैसे शब्द की बात कर रही थी मैं कि शब्द जब थक जाते हैं तो वहां से संगीत का सफर शुरू होता है। और आप सुन रहे हैं सुरों की महफिल छाया लोक में।
1: सुरों की महफिल

दोस्त बने रहे यूं ही, क्योंकि 7:38 हो चुके हैं 107 FM रेनबो पे। आप सुन रहे हैं रिंकू को हमारे सुरोगी महफिल शो पे। आइए सुनते हैं अभिजीत और पूर्णिमा की आवाज में ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, महफिल की शुरुआत किसी खूबसूरत ख्याल के साथ, लेकिन फिर भी एक और है गीत जो आपके पास आपके साथ। मैं हूँ आरजे रिंकू, जो आप सुन रहे हैं सुरों की महफिल। आइए सुनते हैं बैक टू बैक दो गीत
1: सुरों की महफिल।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से ये गीत। वैसे दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 7:54 और हमारे रेडियो एफएम का यानी कि 107 रेनबो का हमारा जो शुरू की महफिल का शो है वो भाग दो में परिवर्तित हो गया है। भाग एक यानी कि आरजे रिंकू के साथ आप सुन रहे थे और आप सुनेंगे भाग दो में यानी कि 8 के बाद आप सुनेंगे आरजे रोशन के साथ आप ये शुरू की महफिल का कंटिन्यू पार्ट। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही क्षणों में मैं आपको सुनाई देती हूं अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। सुनते रहिए रिंकू की आवाज में और साथ में अलका याग्निक की याद करते हुए मुझे

गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 एफएम रेनबो पर एक बार फिर हाजिर है आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मरार का, और जो लेकर आया है कार्यक्रम छाया लोक। और भाई आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर याद है ना, नंबर है हमारा 2213-1341। लेकर आप आना है अपनी फरमाइश और फिर हम बातें करेंगे और आपके दिल भरे प्यार भरे फरमाइश के गीत सुनाएंगे। क्यों, सही है ना?

दोस्तों प्यार मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन जब हसीना रूठ जाए ना, जब हसीना रूठ जाए तो मौसम भी बदल जाते हैं, होठ मुस्कुराना भूल जाते हैं और दिल के अरमान मचल जाते हैं, और उसे मनाने का हुनर अगर आ जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर मनाने का हुनर आ जाए तो हर शिकवा हर गला पल भर में पिघल जाते हैं।

0: दोस्तों गाड़ी तो छूट गई लेकिन हमारे कॉलर फ्रेंड आ गए हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ
1: हाँ, राजकुमार कार्तिक नंदन कुछ बोल रहे हैं।
0: बोलिए राजकुमार जी, कैसे हैं?
1: आप फिल्म कथित प्रकरण का सुना दीजिए, मुकेश कर रहे हो।
0: अच्छा भाई साहब, ये तो बताइए कैसे हैं आप?
1: जिस गली में तेरा घर ना हो बोल।
0: क्यों ऐसा उदास गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप? क्या बात है?
1: हाँ,
0: इतना उदासी भरा गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ
0: चलिए ठीक है। आइए दोस्तों, राजकुमार जी की पसंद पर प्यारा सा नगमा तो नहीं कहेंगे, एक उदासी भरा गीत मुकेश की आवाज में आइए सुनते हैं। और वैसे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, नंबर एक बार फिर से बता देता हूं, 2213-1341।

0: ये दोस्तों देखते हैं कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, क्या कहते हैं आइए सुनते हैं।
1: हेलो,
0: बोलिए।
1: हाँ नमस्ते दादा, मैं विमल मित्र राजवाड़ा ठुकरी से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए जनाब।
1: दादा हेलो,
0: बोलिए बोलिए।
1: हाँ बोलिए, मैं विमल मित्र बोलिए राजवाड़ा ठुकरी से। दादा
0: बोलून।
1: हमें राज फिल्म से उदित नारायण का गाना सुना दीजिए।
0: उदित नारायण ज्यादा पसंद है क्या आपको?
1: हाँ उदित नारायण सभी पसंद है, उदित नारायण पसंद है, कुमार सानू अलका याग्निक सभी पसंद है। राज फिल्म का गाना उदित नारायण का आपका पास होता आप सुना दीजिए एक गाना आपको, और एफएम रेमबो का सब श्रोता बंधु का सुनाना चाहता हूँ। मैं विमल मित्र राजवाड़ा ठोकरी से बोल रहा हूँ।
0: चलिए ठीक है दोस्तों, विमल जी की पसंद पर सुनवाते हैं ये गीत। अगर आपकी भी कोई पसंद है तो अभी भी बहुत वक्त है, 9 बजे तक आपके साथ हूँ 107 FM रेनबो पर। आइए अपनी

0: सुंदरता ये नंबर है हमारा 2213-1341।
1: अबे जो शराबों में मिले आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आई।

दोस्तों, सुप्रिया ने हावड़ा से फोन किया था, उनकी लाइन कट गई और वो सुनना चाहती थी तेरी मेहरबानियां से दिल बेकरार था। तो आइए भाई, लाइन कट गई है तो हम आपके दिल को उदास नहीं करेंगे, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे ज़रूर। और अगले कॉलर फ्रेंड को नंबर एक बार फिर से बता दूं, नंबर है हमारा 2213-1341। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक अपने रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका के साथ।

0: दिल की बेचैनी जब अल्फाज बन जाए तो हर धड़कन एक कहानी सुनाए। कुछ एहसास ऐसे होते हैं दोस्तों जो वक्त के साथ नहीं बल्कि यादों के साथ और गहरे हो जाते हैं। प्यार, इंतजार और एहसासों से सजा यह गीत दिल के उन कोनों को छू जाता है जहां आज भी कुछ खूबसूरत यादें महफूज हैं। आइए इन यादों के कारों को यूं ही आगे बढ़ाते हैं और संगीत के इस सुहाने सफर का आनंद लेते रहते हैं। फिलहाल देखते हैं कोई कॉलर फ्रेंड लाइन पे है या नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, बोलिए।
1: अभी खरसाई बेगमपुर हुगली मध्य पड़ा थे कि अल्पना दे बोलती बोलती जी हमके मेरा गांव मेरा देश बेर गानटा सुनिए देन एकटू देखो ना भाई। আমি একটু আগে ফোন করেছিলাম।
0: ঠিক
1: ঠিক
0: चलिए भाई, अल्पना जी ने अपने गाने की फरमाइश की और लगता है कुछ कहना नहीं चाहती थी, कोई बात नहीं, उनकी पसंद का ये नगमा ये लीजिए।

0: कुछ कहना।
1: दोस्तों सावन को जो कहना था वो तो कह चुका, फिलहाल कॉलर फ्रेंड लाइन पे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आइए सुन लेते हैं, जान लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार दादा।
1: नमस्कार नमस्कार।
2: अमी बिलाड़ा हवाखाना हुगली थे के विश्वनाथ गायन बोलछी।
1: बोलिए भाई।
2: बोलिए, बोलते अमी सुनते चाहिए इस मुहूर्त 1973 रिलीज हुआ छवि जैसे के तैसा। गाने कथा हे आपके सावन मैं जी डरे धीम धीम गरीब।
1: मतलब सावन आने के पहले ही आप डरने लग गए?
2: ना भय लागे ना।
1: भय लागे ना, लेकिन गाना तो आप ऐसा ही सुनना चाह रहे हैं।
2: हाँ, सावन मासे सब वेदर टा सावन मासे मतो तो ओइजने सावन मासेर गान सुनते चाहिए।
1: ठीक है।
2: आ दादा एक गानेर कथा होच्छे आनंद बक्सी लिखेछेन।
1: हाँ
2: हाँ। आ सुर सुरकार होच्छे आरडी बर्मन।
1: थैंक यू दादा, थैंक यू।
2: ভালো থাকবেন, নমস্কার নেবেন দাদা। অনেকদিন পর ফরমিস প্রোগ্রাম চালু হলো, আমরা অপেক্ষায় ছিলাম, খুব ভালো লাগছে।
1: ধন্যবাদ। चले दोस्तों हमारे कॉलर फ्रेंड की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म जैसे को तैसा से ये गीत आप सबों के लिए।

और फिलहाल याद रखिएगा 9 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। आपको डायल करना है 2213-1341 और लेकर आना है अपनी फरमाइश। आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

0: बारिश की फुहारों ने फिर दिल को छू लिया, बारिश की फुहारों ने फिर दिल को छू लिया, भीगी हुई हवाओं ने हर गम को भुला दिया। बरसती रही बारिश और यादें भी आती रही, बरसती रही बारिश और यादें भी आती रही, इस मौसम ने फिर किसी अपने का एहसास दिला दिया। फिलहाल दोस्तों अपना तो हमारे कॉलर फ्रेंड हैं जो हाजिर हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार रोशन सर।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: जी सर, मैं दरभंगा बिहार से मोहम्मद नासिर साहब।
1: बाबा कितने किलोमीटर दूर से बोल रहे हैं भाई साहब?
0: ये 550 किलोमीटर सर।
1: वाह क्या बात है।
0: जी सर, जी सर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर। मैं तो आपका पुराना श्रोता हूँ सर। मैं कोलकाता में भी जब बेलियाघाटा में रहता था और अभी भी मेरा वहाँ शॉप है भाई का, तो मैं वहाँ से ही आपका पुराना श्रोता हूँ। हमेशा मैं आप एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो के साथ तमाम कार्यक्रम में सुनता था सर।
1: क्या बात है।
0: और तब से ही मैं श्रोता हूँ और आपका नंबर एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो का, दोनों का नंबर सेव है मेरे मोबाइल में। मैं जब दरभंगा बिहार में आया तो मैं सर यहाँ से हमेशा फोन करता हूँ और फोन कर करके आपसे बात करने का ये दूसरी बार सौभाग्य मिला है। पापिया मैम से भी बात होती है सर, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है कि जब हम एक दूसरे से एक दूसरे की बात को शेयर करते हैं। और खास करके मैं दरभंगा बिहार के बारे में बताऊं सर, तो दरभंगा बिहार में ये पुराना स्टेडियम अभी भी है और पहले यहाँ अक्सर क्रिकेट खेल होता है, होया करता था, टूर्नामेंट हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ टूर्नामेंट वगैरह नहीं हो रहा है सर।
1: क्रिकेट में बहुत रुचि है आपकी?
0: जी जी सर, मेरे यहाँ क्रिकेट में बहुत पुराना रुचि है और मैं बहुत पहले से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ सर।
1: चलिए भैया बढ़िया बात है, मतलब लेकिन एक बात है भाई साहब, ये क्रिकेट आप ये बारिश के मौसम में क्रिकेट की याद दिला रहे हैं, तो अभी तो क्रिकेट होना बहुत मुश्किल है ना?
0: नहीं सर, अभी हमारे दरभंगा में खास करके मैं बिहार की बात बताऊं सर, तो पूरे बिहार में बारिश एकदम पूरा 0% या 1% कह लिए सर, इस तरह से बारिश है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा तपिश हो रही है पूरे बिहार की, यही
1: तो मेरे को लग रहा है कि इस मामले में मतलब हम कलकत्ता वाले अच्छे हैं, मुंबई में भी बारिश हो रही है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, कलकत्ता वाले बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बारिश का आनंद ले रहे हैं। और साथ साथ ये भी मैं तमाम लोगों से दरखास्त कर रहा हूँ,
1: आपकी तरफ भिजवा
0: कर दिए। जी जी बिल्कुल सर, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए ठीक है, ईश्वर से दुआ करते हैं। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: जी सर, मेरा गाना है उपहार फिल्म से, मैं एक राजा हूँ तू एक रानी, 1971 की फिल्म है, मोहम्मद रफी की आवाज में और अनंत बख्शी के इसमें म्यूजिक है, ऐसा संगीत है।
1: अच्छा, कभी गुनगुनाते हैं भाई साहब? क्या नाम बताया
0: जी? मोहम्मद नासिर।
1: नासिर जी कभी गुनगुनाते हैं खुद में?
0: बिल्कुल सर बिल्कुल।
1: इस गाने को गुनगुना के सुनाइए जरा।
0: बिल्कुल सर, गुनगुना के। मैं एक राजा हूँ

0: चलिए दोस्तों, वक्त बहुत कम है, कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, कार्यक्रम समाप्त होने से पहले उनसे बातें कर लेते हैं और उनकी फरमाइश का गीत बजा देते हैं। आइए, कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: मैं नन्ने बोल रहा हूँ, बाटा नगर से।
0: अभी तक नन्ने हैं, बड़े हो गए?
1: नहीं सर, 6 फुट 1 इंच लंबा हो गया और 35 साल उम्र हो चुका है।
0: चलिए, वक्त बहुत कम है, जल्दी से बताइए।
1: आप मुझे कुमार सानू का कोई भी गीत सुना दीजिए, और आप प्रोग्राम में इसलिए आते रहे ना।
0: और कुछ कहना है?
1: और तो बहुत कुछ बोलना है लेकिन वक्त बहुत कम है।
0: चलिए ठीक है, वक्त बहुत कम है, हमारे कॉलर फ्रेंड भी समझते हैं वक्त बहुत कम है। फिलहाल आइए उनकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं, और आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका को यही आज्ञा दीजिए, कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए। सुनते रहिए, फिर मिलूंगा किसी अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।